कम कहीं ज्यादा कहीं कम कहीं ज्यादा कहीं कम अर्रम तर्रम दुनिया के कैसे कैसे गम कहीं ज्यादा कहीं कम।

तेरे मंजिल की वो तेरी मंजिल की तस्वीर बन जाऊंगी। मंजिल का साथ है, दिल में की याद है, तू क्यों उदास है।

प्यारी प्यारी तड़पती हूँ मैं आरज़ूएं छुपाए तड़पती हूँ मैं आरज़ूएं छुपाए।

0: राम के मन में सीता का ध्यान,
1: प्राणों की आरती, प्राणों की आरती जलाई है जलाई है।
2: राम जन्म की बधाई है, बधाई है। राम जन्म की बधाई।

तुम आज पिछित हो जाओ मेरे बाल माँ अब न सताओ रे आओ रे आओ रे आओ रे मेरे बाल माँ अब न सताओ।

तुम आज पिछित हो जाओ ने मुर्बान माँ अब न सताओ रे आओ रे आओ रे आओ रे मुर्बान माँ अब न सताओ।